राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़ वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

मेरा हुक्म मन्नेगा। ओ मेरा गुरु, मैं उसका चेला। जे मेरा हुक्म नहीं मन्नेगा तां कदी सुपने विच भी ए इच्छा ना रखे कि मेरे घर विच कदी सुख आवे। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी फरमान करदे हन, जे मेरा कहना नहीं मनना ते यकीन रख गुरसिख, कदी तेरे घर विच सुख नहीं आ सकता। सुख दी इच्छा ना रखी। पातशाह आखदे हन,

प्रथम रेत ये जान खंडे की पाहुल छके। सब तो पहला हुक्म है अमृत पान करना, दूजियां गल्लां बाद में। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी फरमांदे हैं, प्रथम रेत ये जान खंडे की पागुल चके, सोई सिंह प्रधान अवर न पाहुल जो ले। पांच सिंह

हुक्का हुक्का चरस तमाकू। ये चीजा वरतनिया थे दूर, इन्हों वल वेखना भी नहीं। केड़िया

ताड़ी का मतलब है शराब। अज गुरु का सिख मैं ते आखांगा 100 विचों 99% इस नूं वरतन लग पए हैं। शायद समझदे ने खुल दे दित्ती है कुछ, पर मैनू खिमा कर देना, उसे लाइन विच पातशाह ते शराब नूं रख रहे हैं जिस विच गुट्ठे नूं रखिया है, जिस विच हुक्के नूं रखिया है। पातशाह आखदे सारियां लाइन ते चीजां इको वारी भर दित्तियां, नहीं वेखना। गुरु अमरदास साहिब जी ने फरमाया, गुरु के सिख इस दे पीण नाल लत्तां लड़खड़ांदियां हन, बंदा डिगदा है। याद रखी, इत्थे भी तके अगे भी तके, जित पीते मत दूर हो, बरल पवै तन आए। सच्चाई सुननी बड़ी औखी है गुरु के सिखो, पर जरूर सुनिया करो, सुन के विचारिया करो वे पातशाह सानू की आख दे। पातशाह आख दे जित पीते मत दूर हो, बरल पवै तन आए। अपना पराया ना पछाणे, ओ खसमो तके खाए। ऐसा मद मूल ना पीते जेका पार वसाए। साहिब कलगीधर पातशाह आख दे

गुरकरत सुनो हे मीत, प्रभाते उठ कर हित चीत, वाहे गुरु गुर मंत्र सो जाप, कर इशनान पढ़े जप जाप, संध्या समय सुने रह रास, कीर्तन कथा सुने हरिया।

अगम निगम उद्गण जरा जमया गुरु अमरदास थे थपयो परगामी तारण तारण आगे अंतक बजे।

कुछ खीर पा रहे हो खाणगे तनिया इंजनी आखीदा तैनू की पता तू तक सिर्फ जिम्मेदार है तैनू की पता के पत्थर नहीं हन होर की हन पंडित जी मेहनत पत्थर ही जाप देने नहीं तनिया पत्थर नहीं ठाकर हन पंडित जी ठाकर की होंद है तनिया मैं तेन किवें समझावा ए पत्थर नहीं जे तेन आखिया है जे तेरा मन ही मन गया है पत्थर नहीं कि ठाकर हन फिर तू आखदे ठाकर की होंद है ना पंडित जी फिर मैं दस के देवो ठाकर की होंद है तनिया ठाकर वो है जिस दे आसरे ते सारा संसार है। अच्छा जी फिर ठाकर की करता है तन्या सवाल ते सवाल करे ठाकर को जो कुछ मंगी मैं जो कुछ मंगिए देंदा है फिर तन्या सारा संसार ठाकर दे कोलों चोलियां फैला के खैराता मंगता है।

अपने लक्ष न प्रवाह लख सप्तः जो लखनऊ संपड़ी पड़वा जिनका से गणा किया।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल ओ फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

काम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर च नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सोध, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करदी, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजां मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वश च नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इस नू टकाण दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्हां नू लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्हां नू आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल you will find a great difference in your quality of mind and you will achieve stillness of mind. Abhyas ki hai? Bani ch istra akhi hai.

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार असवारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट्स टू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असि अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव की है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनैक्टेड यूअर सैल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वद्दा है, अगां वद्दा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधते जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होते जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी की अंश, वो है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असी उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनेक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए, अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

है मंद, और तीसरा अभ्यास है गुरु बाबा जी आखते हैं श्रुति दा, क्योंकि अगर दो इंसान गलबात कर रहे हैं एक दी सुरत उथे नहीं है, ध्यान उथे नहीं है, अटेंशन उथे नहीं है, तो एक बंदा कुछ कही जाता है पर एक बंदा सुनदा सुनदा भी उसनु कुछ नहीं पता चलता। बाद अगर उसनु दूसरा इंसान पूछता है कि मैं की क्या, तो वो बड़ा एम्बेरेस हुंदा है कि मैंने तो पता ही नहीं चलिया कि की क्या है, क्योंकि सुरति उथे प्रेजेंट नहीं सी, ध्यान उथे प्रेजेंट नहीं सी, इस करके वो गल कही हुई भी असी रजिस्टर नहीं की। कई दफा असी सामने कुछ देखते हैं पर साडा ध्यान कितने हुंदा होर है, फिर भी असी देखण दे बावजूद भी चीज देखी नहीं हुंदी क्योंकि ध्यान कितने होर सी। सो तीसरी साधना है ध्यान। इस शब्द दे विच महाराज जी ने पहली ही लाइन च यह तीन गल्लां आखतियां, नाम जपण दे वास्ते जो मैथड है सब तो पहला अपनी बॉडी नूं साधो, शेप अप करो, इस दीयां हैबिट्स नूं ठीक करो, इस नूं मास्टर करो, इस दे उत्ते अपना कंट्रोल अचीव करो, सेंसेस दे प्लेजर जो सानू ड्रैग करदे हन उहनां उत्ते अपना कंट्रोल करो। दूसरा है माइंड, जिसकी मैं आप जी की सेवा च अर्ज कर चुका हां, उस अभ्यास नूं करो, अपने विचारां नूं अलग बैठ के सिर्फ देखो। ए पहली दफा ए फिनोमिनन होएगा कि यू विल बी सेपरेट फ्रॉम योर थॉट्स जस्ट वाचिंग दैम, अते जो थॉट्स हैं वो ताही आ सकते हैं अगर उन्होंने को वाच ना करे। थॉट्स कैन ओनली अकर इन योर एबसेंस, अदरवाइज दे कैन नॉट। इफ यू आर प्रेजेंट वाचिंग देन देर इज नो रूम फॉर द थॉट बिकॉज द प्लेस इज ऑलरेडी बींग ऑक्यूपाइड बाई यू। सो तीसरी प्रैक्टिस है सुरती दी, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु साडे अंदर भी है साडे बाहर भी है, पर वो नजर क्यों नहीं आंदा, नजर क्यों नहीं आंदा, साडी सुरती च नहीं आंदा। तो महाराज जी आखते हैं अपने जीवन दे विच एक नवी चीज पैदा करो, नवी चीज ग्रो करो, जेड़ी एक नमे किस्म दी सुरती है, नमे किस्म दी सुरती। उस दे लई सिंपल लफ्जां दे विच मैं आखां, फिर मैं बाणी दी लाइन भी आखांगा। महाराज जी आखदे हन अपनी सुरती दी सुरती रखनी शुरू कर दे। सोचो पहला इस नूं दास की अर्ज कर रहा है, जिस तरह साडा बच्चा बाहर खेड रहा है ना, असी उसकी सुरत रखदे हां कि कित्थे है, किधर नूं जा रहा है, किधर नूं खेड रहा है। एक है साड़ी सुरती, कहते हैं सुरती दी सुरती रखो। बड़ा सटल अभ्यास है, हर वेले सुरती नू देखो कि सुरती कित्थे है। तो तुसी असी की अचीव करांगे, एक नवी सुरती जो सुरती नू देखदी है। पहला साड़ी सुरती नू कोई देखने वाला नहीं, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है। नाउ एक होर सुरती डिवेलप हो गई है जड़ी सुरती नू देखती है, उस दे लई ए टेक्निक गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दी है। कहिंदी सुर कहिंदे हन सुरती सुरत रलाई है एत, ए गुरु नानक साहब जी दे वचन हन। कहिंदे अपनी सुरत दे उत्ते सुरत नू रला दियो, सुरत नू रख दियो, सुरती सुरत रलाई है एत, अपनी सुरत दे उत्ते सुरत रखो। ए अभ्यास हर वेले करो, यानी अपने ध्यान दा ध्यान रखो भी ध्यान किथे है, क्योंकि जितनी देर तक ध्यान अते सुरती बहुत बारीक बहुत मान्यूटली अपनी सुरती नू अपने ध्यान नू नहीं देख सकते, उतनी देर तक वो आत्मा जिही सूक्ष्म चीज नू नहीं देख सकते। होनी चाहिए उसके वास्ते ए अभ्यास है। महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू जो फरमाया है आप जी की सेवा च मैं दसदा हां कि इसे ही शब्द दे विच गुरु साहब ने ए तिन्ने चीजां आखियां। नंबर एक, भांडा धोए बैस धूप देवो,

अपने इस पांडे नु शुद्ध करो। तो दूधे को जाओ, जे पांडा मैला है, शुद्ध नहीं है, उस दूध पाया की खराब नहीं हो जाएगा। फिर कहते हैं दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। दूध कर्म कहते जेडे तुहाडे कर्म हैं ना, कर्म की हैं, बोलना यह भी तो कर्म ही है ना। सारी इंट्रैक्शन जितनी भी है साड़ी ह्यूमन लाइफ दे विच, ओ साड़े कर्म हन। केंदे ओ दुद्ध वर्गे सच्चे सुच्चे पवित्र होने चाहिए हन, दुद्ध वर्गे साफ, दुद्ध वर्गे निर्मल कर्म होन। झूठ ना बोलिया जाए, कौड़ा ना बोलिया जाए, फिक्का ना बोलिया जाए, होमेच ना बोलिया जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए, दुख ना दे किसे जी पत स्यों कर जावो। कहते किसे नू भी कदे तो आपको दुख ना पहुंचे ता तुसी पत दे नाल वाहिगुरु दे घर च जा सकते। तो अगर कोई शख्स हर्ट हुंदा है ते ओ निर्मल कर्म नहीं है, दुध वर्गे कर्म नहीं है। कहते तुहाडे कर्म दुध वर्गे होने चाहिए। सो दुध की है, दुध वर्गे कर्म। भांडा की है, यह शरीर, यह साफ सुथरा होवे फिर दुध कर्म जो हन दुध वर्गे, ओ इस दे विच दुध पाया होवे फिर मक्खन कढ़न दे वास्ते असीं उस दुध नू जाग लगाने हैं, उस दुध नू जाग लगाने ना दही पा के। कहिंदे उस दुध नू जाग किवें लगाना है ताकि वो दही बने। शुभ कर्म हो गया दुध, शरीर हो गया भांडा, हुण जाग लगाना है। कहिंदे सुरती दा जाग लगाओ, सुरती दा जाग लगाओ जिहड़ी इस दुध नू तब्दील करके उस फॉर्म च कर देगी जिथों मक्खन ने निकलना है। रब है मक्खन, और रब मक्खन दे वास्ते महाराज ने यह सिनेरियो साडे सामने रखा है, यह सिमली दिती है। कहिंदे सुरत समायण, समायण का मतलब हुंदा है जाग लगाना। पांडा तुहे बैस धूप देवो तो दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण। कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया, शुभ कर्म वो है दुध। हुन सुरत समायण, सुरती दी आदत, सुरती दा अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दियो। हर वेले अपनी सुरती दी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है, सुरती की देख रही है, सुरती की सोच रही है। सुरती दी सुरत रखो, ध्यान दा ध्यान रखो, ऐ दो गल्लां याद रखो। सुरती दी सुरत रखो, ऐ किवें होएगा। हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां, दंदां नाल चबा रहे हां, पर सुरती नाल की कर रहे हैं। सुरती कित्थे है, नाल दी नाल भी कम कर लो। लंगर मैं छक रहे हां, सुरती कित्थे है। ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही ते सुरती नूं वापस लै आओ। कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसीं बैठे हो, जिथे लंगर छक रहे हो, ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो, उसनू मुंह च पा रहे हो, उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट वेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे होंने हाँ, सुरती करके असी कितने होर होंने, प्रेजेंट नहीं होंगे। सुरती का अभ्यास इस तरह करना है, हर चीज दे विच सुरत नू उत्थे प्रेजेंट रखना है, सुरती दे उत्ते सुरत रखनी है। इशनान कर रहे हो तो सुरती नू देखना है, तो सुरत कित्थे है, इशनान ही कर रही है जां कुछ और कर रही है। सैर कर रहे हो उदो सुरती नू देखना है कि सुरती सैर ही कर रही है जां कितने होर है। सैर असी सिंगापुर च कर रहे होइए तो सुरती करके इंडिया च तुरे फिरते होइए, सुरती भी उत्थे ही होवे। यह है सुरती का अभ्यास। यानी कुछ भी करना है उस दे विच ए ध्यान रखना कि सुरती उत्थे ही है या कितने होर ते नहीं। सुरत समायण कहिंदे सुरती का जाग लगा दियो। दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। कहिंदे इतना कुछ करन तो बाद कहिंदे जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। कहिंदे एना सारिया चीजां दी तैयारी साधना करन तो बाद नाम जपया जाएगा। तो फिर नाम जपना है असी किवें, ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे।
रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावे। ए मन इंटी हाथ करो। इंटिया जदों पंजाब दे विच बीबियां मधानी दे नाल दुध रिड़कदियां सन ते ओ रस्सी नू आखदे हन नेत्रा, उस रस्सी दे दोने एंड्स दे उत्ते छोटियां छोटियां लकड़ी दियां गुल्लियां बनियां हुंदियां सन, उन्हां नू इंटी आखदे हन। कहिंदे मन नू जदों रसना दे नाल नाम जपना है इस तरह पकड़ के रखना है जिस तरह दोने हत्थां दे नाल बीबियां ने ओ लकड़ी दियां इंटियां पकड़ियां हुंदियां सन, ते रस्सी हुंदी है नेत्रा। ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे। नेत्रा ए है, रस्सी ए है कि किते तुहानू नींद ना आ जाए। पाव मन नू इतना घुट के रखना है कि मन तुहाडे ख्याल चो बाहर ना जाए, तुसी एबसेंट माइंडेड ना हो जाओ। इसका मतलब है कि नींद ना आ जाए। फिर रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो। फिर कहते हैं रसना दे नाल वाहिगुरु शब्द का नाम जो गुरु तो प्राप्त होया है उसनू जपना शुरू करो। जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है उदों फुल अवेयरनेस दे नाल आखना है। तुहानू पता होवे कि तुसी वाहिगुरु शब्द कह रहे हो और कहा है। ऐसा ना होवे कि एक दफा भी वाहिगुरु शब्द कहा होवे और तुहाडी अवेयरनेस दे विच ना होवे, तुहाडी सुरती विच ना होवे। हर वक्त जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है वो ध्यान दे नाल आखना है और उसनू सुनना है ताकि तुहानू पता लगे कि तुसी वाहिगुरु शब्द आख्या है। पहली स्टेज है वाहिगुरु दे नाम जपण दी, सिमरन करन दी, वो है बोल के। उसनू मेरी सजेशन यह है कि 6 महीने तो लैके 9 महीने या साल तक, पहला साल जो है वो बोल के अभ्यास करना चाहिए है। बोल के, ताकि हर बार तुसी बोलो उसका पेस बहुत तेज नहीं रखना। माला ले लो वड्डी या छोटी, लेकिन उसका जो पेस है ओहो बहुता ज्यादा तेज ना होवे। कि बहुत तेज तेज तेज तेज कहते ऐसा ना होवे कि माइंड जो है वो उसके विचों कितने होर पासे चले जाए। हर दफा वाहिगुरु शब्द कहने दे वेले पूरी अलर्टनेस दे नाल, पूरी अवेयरनेस दे नाल वाहिगुरु प्रेम दे नाल आखना है। और जिस चीज नू वाहिगुरु क्या है वो है साडे अंदर साडी आत्मा, जोत, जिंदगी, जीवन दी रौ जो सबना दे विच है, उस वस्तु का नाम है वाहिगुरु। और उसनू अपने ख्याल च लैके आना है। आफ्टर ऑल असी किसे वस्तु नू, किसे सबस्टेंस नू, किसे ही होंद नू ही वाहिगुरु कह रहे हैं ना, उस होंद नू भी अपने मन च लियाना है। और बिल्कुल अवेयरनेस दे नाल, ख्याल दे नाल, ध्यान दे नाल, बेसुरती दे नाल वाहिगुरु नहीं आखना। तो इस तरह कीता होया जाप जो है, अगर हर रोजाना असी अपना एक टाइम सेट कर लिए कि 1 घंटा करना है, अगर असी साल भर कर जावांगे तो साल भर दे विच इस तरह कीता होया अभ्यास सानू आत्मक मंजिलां च, सुरती दे मंजिलां दे विच किते दा किते लै जाए। तो कि असी 1 साल भी इस विद्या दे वास्ते, इस प्राप्ति दे वास्ते डेडिकेट नहीं कर सकते। कि यह साडा फर्ज नहीं बनता कि बाबा जी की सारी बाणी च यही गल आखी गई, नानक के कर केवल नाम, सिर्फ नाम ही नाम है। फिर असी कदों जपांगे? नाम तो बिना महाराज कहते नरक कहीं ना लेके। सो ये जो विचार आप जी के सामने रखे हैं, इन्हों आप द्वारा रिकॉर्डिंग्स के विचों सुन के भी रिवाइज कर सकते हो। 3 लैवल्स हैं जो मैं आप जी की सेवा च रख चुका हाँ। काया नू साधना है और मन दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते सवार रहना है। तीसरी गल सुरती दा जाग लगाना है। दुध वर्गे कर्म करने हैं, निर्मल पवित्र इतने अच्छे कर्म करने हैं कि उन्हां नू कंपेयर कीता जा सके दुध वर्ग। और फिर उस दुध नू सुरती दा जाग लगाना है, सुरती दा जाग लगाना है, सुरती दा अभ्यास करना है। इशनान करन वेले सुरती कित्थे है,
बिस्तरे ते लेटे पए हो सुरती किथे है, खाना खा रहे हो सुरती किथे है, कार चला रहे हो सुरती किथे है, सैर कर रहे हो सुरती किथे है। जिसने सुरती का अभ्यास करना शुरू करता उसने इसनू कंटीन्यूसली हर वक्त करना है, उसके कोई फिर जो है वो टाइम अजिहा नहीं कि हूं ना किया जाए। दिस इज ऑन गोइंग थिंग, सुरती का अभ्यास हर वेले करना है। सुरती का अभ्यास करद्या करद्या करद्या करद्या सुरती ने इतनी शार्प हो जाना है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाना है, इतनी माइन्यूटली देख सकन दे उसने काबिल हो जाना है कि वही सुरती दे विच एक दिन आत्मा ने आना शुरू हो जाना है। उस ही सुरती दे विच वो वाहिगुरु जी की जो जोत है उसने आना शुरू हो जाना है। उन ज्यादा समा नहीं है, इस करके कीर्तन की जो विचार की लड़ी आज इतने संपूर्ण होंगी है। जो टॉपिक आरंभ होया सी उसनू आज इतने महाराज जी की बख्शिश के नाल असी कंप्लीट कर रहे हैं। और इन्हां विचारां नू आप अपने अभ्यास दे विच लियाओ, सुरती दी साधना करो और रोजाना अपने अपने जीवन दे विच कोई टाइम जरूर कमिट कर लो। सवेरे सूट करदा है जां रात नू सूटेबल है जां दुपहरे, पर एक टाइम ऐसा होवे जो तुहाडा सिर्फ अपने वास्ते होवे, उस वक्त दे विच रोजाना वाहिगुरु शब्द का अभ्यास जो है वो नितनेम दे नाल करना है और बहुत ध्यान दे नाल जागरूकता दे नाल करना है। और उस दे नाल नाल अगर हो सके तो गुरु बाबा जी की बाणी का अभ्यास जितना बढ़ सके गुरु ग्रंथ साहब महाराज का एक पेज रोजाना पढ़िया जाए, जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं हैं तो गुटकियां हाथ तो पढ़ लिया जाए। तो इस तरह अपने मन नू हर वक्त इसी दायरे दे विच रखना है। तो इस दायरे दे विच रख के जो अभ्यास करता जाएगा उसका अंदर भी शुद्ध हुंदा जाएगा, शरीर भी उसका मंदिर बन जाएगा, शरीर उसका रब की कामणी बन जाएगा, शरीर उसका सरोवर बन जाएगा और उस सरोवर दे विच आत्मक फूल खिलणगे और उसकी जो जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। फूल चुक दी खेमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।

0: नाटमेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता सचुग्रह संतो का धर्म गिरथवाओ त्रितरा जते का जोर गिरथवाओ द्वापर तपे का सत गिरथवाओ कलयुगरा तगन का कूड़ गिरथवाओ महला पहला
1: शाम कैसे तंबर स्वामी सच में अच्छे साजरे।

जुजमै जोर छली चंद्रावल काम किस्म जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंदा बन में रंकिया कल मैं वेदर थरवण।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तों अनादि काल तों सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है तो काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला प्रगटाण वाला इसम फाइल ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते भेद जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड़ियाई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना टारे रोजी ही राज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे जेड़े तेन मनते ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करन वाले ने उना दी ते गल छड़ दे तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है रोजी हिराज विलोकत राज कर रोख रूहान की रोजी न टारे रोख मीन्स रुखियां रूहान जमा है रूह दी तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है जड़ा गजाज दे जांदियां ने हरियावल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा समझो कि मर गई अकड़ गई ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे च लचक रहिंदी है ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने उहनां नू भी तू अपने गैबी खजाने विचों वडमुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है जो तेतो मुनकर ने तेरिया दातां भी ले जांदे ने तेरिया बख्शिया भी माणी जांदे ने हे मुने परमेश्वर तेरिया नेमतां भी माणी जांदे ने तेतो मुनकर भी ने पर फिर भी तू उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा मेरे गुरु ने मैनू सोझी पुआ दिती है गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी हाजत नहीं रह जांदी ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो कौन है इसते मुकाबले दा दाता साचा साहिब है ते वड्डा दाता है उसदे भंडारे अखुट ने वाह
मोह दूजी नाही थोर जिसके हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जाता है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इथे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उथे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घरां दे अग्यों दी आया, बीबियां माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहन नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है, ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, पे इथे अगे आ जा, तुसी ता कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता ढीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल ढीठ होके नहीं मंगदा, ढीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना, जब तक कोई ढीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या, ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चाना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदो तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपके तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे।

0: लखी लखी ना जाए जाए लखी ना जाए जाए
1: हर बे अंत हो मित कर वरनू क्या जानू होए कैसो रे करूं बेल

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटाओ सिमरो